0: கவிதைத்த இந்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது மதுரை தென்றல், தொடர்வது சென்னை அஞ்சல்.
1: பாடற் பயிற்சி. ஈ மொஹிஜோ வதன் என தொடங்கும் சிந்தி மொழி பாடல், ஆசிரியர் ஹெச் துக்கயால்.
2: ஆ பச்சோ, ஆஜ தும் சப்கோ எக் சிந்தி கீத் சிகாயா ஜாயேகா, ஜிஸ்கே கவி கா நாம் ஹை ஸ்ரீ ஹுந்தராஜ் துக்கயால். இஸ் கீத் கி துன் ஸ்ரீ கானு கோஷ் நே பனாயி ஹை. அப் இஸ் கீத் கே போல் லிக்னே கே லியே தும் சப் தயார் ஹோ ஜாஓ.
3: பியாரே பச்சோ, யே ஹை சிந்தி மே தேஷ் பக்தி கா கீத். ஷீர்ஷக் ஹை ஹீ முஹிஜோ வதன். मुखड़ा ही मुझो वतन, मुझो वतन, मुझो वतन, ही मुझो वतन, मुझो वतन, मुझो वतन, मिसरी का मिठेरो, माखी का मिठेरो, मिसरी का मिठेरो, माखी का मिठेरो, कुर्बान तह वतन ता कया पहजो तन बदन, कुर्बान तह वतन ता कया पहजो तन बदन, ही मुझो वतन, मुझो वतन, मुझो वतन। पहला अंतरा, मिठड़े वतन खां, मिठड़े वतन खां आऊं रखी कीब नवारियां, मिठड़े वतन खां आऊं रखी कीब नवारियां, जेकी हुजेम देई वरी कीन पचारियां, जेकी हुजेम देई वरी कीन पचारियां, दिल में हमेशा शाल रहे देश जी लगन, दिल में हमेशा शाल रहे देश जी लगन, ही मुझो वतन, मुझो वतन, मुझो वतन। दूसरा अंतर है, जे चाह अथम तात वतन शाद दिसा मां, जे चाह अथम तात वतन शाद दिसा मां, आजाद दिसा मां, सदा आबाद दिसा मां, आजाद दिसा मां, सदा आबाद दिसा मां, मस्ती इन्हीं में आहे दुखायल जी दिल मगन, मस्ती इन्हीं में आहे दुखायल जी दिल मगन, ही मुझो वतन, मुझो वतन, मुझो वतन, मिसरी का मिठेरो, माखी का मिठेरो, ही मुझो वतन, मुझो वतन, मुझो वतन।
2: अब श्री कानू घोष इस गीत की धुन तुमको सिखाएंगे।
4: प्यारे बच्चों, एक गीत मैं और मेरे साथी श्री फारूक पहले गाकर सुनाएंगे, तुम सब उसी धुन में गाओगे। अब सुनो, 1 2 1 2 3।
5: ही मुझो वतन,

0: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi today spoke with Captain Smith Machar over the phone, praising his bravery and presence of mind in foiling an alleged attempt to crash an Israel-bound fly-by flight. The Prime Minister said Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their own lives to save others. He lauded Captain Machar for taking a split-second decision that helped save the lives of hundreds of passengers.
1: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की और सबसे बड़ी बात 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ। मित्र, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
2: मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आपने सबसे बड़े एक्टर से और मेरे को इसे कॉल करके मेरी फ्रेंड्स कर रहे हैं, मैं बहुत गर्व फील हो रहा है।
0: On Wednesday, the captain got seriously injured after being stabbed by his co-pilot in the cockpit of Fly Dubai flight traveling from Dubai to Tel Aviv. The flight was carrying 174 passengers, including 27 children. The pilot is currently undergoing treatment at a hospital in the UAE. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for WTO-compliant approach